0: कास एफएम 104 मेगाहर्ज हाथ बारी तीन झरीथुम का संकुआ सभा
1: पाखीबास एफएम समय सूचना यो पाखीबास एफएम को समय हो अहिले बिहान को पांच